0: Σε γολότε, μπαφιά, σαν...
1: Ζάχτσα μη πίτε γναβιζί. Ζάχτσκι πίτσα και αξάρ με χάρ.
0: Μέγω γιούσε, το τέτα, έτσι, μέγω γιούσε.
2: 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让爱民锚定了芒果汁。这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商再次聚集。
3: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
2: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
3: The food is more difficult than the stones. Chinese would like this.कैसे हैं भाई ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई
4: तीन सौ
3: कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
2: 讨价还价控制成本是第二步
3: I am nervous because it's not a small business थोड़ा महंगा बता रहे
5: हैं
3: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
5: उसका वो खरीद
3: नहीं है रिटर्न में देखा है ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
5: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
3: थैंक यू
5: अल्लाह का
3: शुक्र बहुत शुक्रिया मेरे पे ओके बहुत खुशी हुई आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
6: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
7: हमें भी खुशी हुई
3: प्लीज भेज
2: 与供货商的合作协议顺利签署
3: Agreement with supplier and
6: then.
2: 两箱芒果汁的样品摆上爱民的柜台。帕米尔高原的风可以抚去连日奔波的疲惫。
3: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds. You can see the big mountains. You can see the greenery, the cool breeze. It makes you feel relaxed inwardly. Because in this beautiful nature, no, I don't worry about anything. I don't feel like that I am far away from my home.I feel like my home here in Tashkurwan.
8: I'll take 2
9: this one.
10: You can try it. It's
9: good. It's mango
2: juice. 爱民的芒果汁颇受欢迎。
9: 啊，对。
11: 这是我们国家的 next time 的海南包。中巴有一吗？50%最便宜。
2: 当暮色降临，塔县的夜市便肃静了。巴基斯坦商贩在此云集，琳琅商品在灯火中流转。当然，这里也少不了爱民的摊位。他的商业拓展延续着父辈30多年前开启的跨文化纽带。
3: The road, which is Silk Road, our Karakoram Highway.